हर हर रूप समासीम। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तप तापें जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु स्मृत शास्त्र जी, कर करे आखट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता।

तो निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करें सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी, तुद आपे सिरज सब गोई।

जिस न तू जाने सोई जिन जाने हर गुण साध ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

आखो शर्मा कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा।

सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबह करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करे, सब बैरन को वास संगरे। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई जवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये, आप हां दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस तो जो करो रक्षा, राख ले मोय राख न हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो।

आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जा बुध करख करा करतारा, प्रजा तर तब दे आ पारा।

तुमरा लखा ना जाए पसारा, कह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूपे अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई पूपा।

समर्पयो शंकरे कथा सगरे सृष्टि दिखाय चंपव आजुगा स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सेख्य बार सेख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण काता जे आस तो जताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुगत हैं मरे।

रचा होए ताए सब काला, दुष्टि अरिष्ट ट्रै तत् काला, कृपा दृढ़ तन जाय न हरे हो, ताके ताव तनक मोह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होए, दुष्ट शास सक न कोई, एक बार जिंत मैं संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हां दिले उबारी, सर्ब ठौर मोह सहाय, दुष्ट दुख ते लियो बचाई। सवैया

0: परम सत्कार जो गुरु प्यारे सिंह जी बड़भागे हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के प्रतख दर्शन कर रहे हो नाल नाल गुरु के चरणों च अरदास बेनती कृत कमाई विचों दर्शनी भेट गुरु जी गोलक च पा रहे हो सतगुर कृपा करे तुहाडा सारयां दा कदम कदम चलिया होया कीती हुई अरदास गुरु ग्रंथ साहब महाराज अपने दर कर प्रवान करन दरों करों सारयां नूं उच्चा सुचा चढ़दी कला वाला जीवन बहमा भरमा तो निवृत जिंदगी जीवन दा ढंग श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बख्शिश करन आओ सारी समुची संगत झुकाओ गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणा विशीस बड़े अदब नाल बख्शो आग्या बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।
0: गुरु खालसा जी ढाडी कथे ने कुछ लाइना तुहाडे सन्मुख रखिया ने कि जे गुरु कृपा करे तो मन गुरु के चरणों में जुड़ जाए। अज हरेक मनुख मन की भटकना तो शांति चाहता समर्थ गुरु गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च आप अरदासां बेनतियां करते हैं। इस ही विषय को रख के असी तुहाडे सामने कुछ इतिहास के बरके शुरू करन लगे हाँ। सतगुरु कृपा करे सानू भी सोझी बख्शिश करे ते तुहानू भी बख्शिश करे। गुरु अमरदास महाराज जी दे तीन भरा होर ने बहुत तुसी इतिहास अगे पहले साढ़े को सरवण कर चुके हो। गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु रामदास महाराज जी ने गुरता गद्दी बख्शी उन्होंने नाल एक बेनती की गुरु रामदास महाराज नूं मैं एक तीर्थ च बनाउणा चाहुंदा जिथे अज अमृतसर बसिया होया जिन्हों शार लिखदा ज्ञानी सोहण सिंह सीतल होना ने लिखिया जिथे अज अमृतसर शहर है पिया हुंदा सी कदे बियाबान चौथे पातशाह मध्य विचकार आके चुनिया सी ए अस्थान एक रचना सी तीर्थ चाहुंदे जिहड़ा दुनिया च होवे जो महान शुरू कीता सी सरोवर पुटना कई थाई पए होए सी खतान एक पुट्टे इहो जे थां ते पानी मींह दा खड़ा सी आन कंडे उस दे किनारे खुर खुर के बन गए सी छपड़ी समान कंडे खड़ी सी बेरी एक संघनी जिहदी जग तो निराली शान। गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु रामदास महाराज ने बेनती की कि असी एक तीर्थ रचना चाहते हो तुसी रचो। फिर गुरु रामदास महाराज जी ने सरोवर पुटना शुरू किया जिन्हें तुसी अज अमृतसर कहने वो सरोवर चार सरोवर होर भी ने रामसर सरोवर है संतोख सर सरोवर है कौलसर सरोवर है एक नाल लागे लागे होर पैंदा बवेक सर पर जेडे अमृतसर दे सरोवर दी जस दुनिया च फैलिया इस सरोवर दे नौ ते ही फिर गुरु रामदास मन ने शहर दा नौ रखिया अमृतसर क्योंकि सरोवर दा नौ अमृत वा। गुरु रामदास महाराज ने शुरू किया सी अमृत सरोवर पटाउणा पर पूरा नहीं हो सकिया। गुरु रामदास महाराज अकाल लीन हो गए परमात्मा च ज्योति ज्योत समा गए। गुरु रामदास महाराज थां ते गुरु नानक दे तख्त उत्ते उन्हां दे सुपुत्र गुरु अर्जन देव महाराज सिखां दे पंजवें गुरु बने। सरोवर होर भी सी संतोख सर दी सेवा आरंभ सी पहला पर संपूर्ण गुरु महाराज ने इस अमृतसर सरोवर की संपूर्णता पहला कराई। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर सरोवर के विचकार दरबार साहब उसारिया, बिल्डिंग उसर गई, संगत ने बहुत वध चढ़ के हिस्सा पाया, माया पक्षों भी सेवा पक्षों भी। जिथे बेअंत संगत आन कली माया की लोड़ नहीं हुंदी, उथे लंगरां की भी लोड़ है। जिथे लंगरां की लोड़ है तो उथे माया की भी लोड़ वा। गुरु अमरदास महाराज ने प्रचारक थापे सी, गुरु रामदास महाराज ने इन्हां नूं मसंद आखिया, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, गुरु अर्जन देव महाराज सिख जदों दरबार साहब की उसारी हो गई, बिल्डिंग उसर गई, फिर लोड़ पई दरवाजे ताकियां रोशनदान बनाउण दी लकड़ दी। कल्ले पे दरबार साहब की नहीं सी, पहल दरबार साहब की रखी, नाल फिर होर पासे पाठी सिंह की रिहायश, सेवादारां की रिहायश, लंगरां वास्ते लंगर हाल, फिर बनाउण वास्ते किचन, वो लंगर हाल दे विच ही गिणी जांदी सी। पर लोड़ पई लकड़ दी, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने सिख नूं आवाज मारी, कहनी दा करनी दा कथनी दा पूरा जवान दा रसिया, बाणी दा प्रेमी कंठ माणी, भाई बीने दा पुत भाई कल्याणा। आपां कई बार अगर जिक्र कीता इस कल्याणे दा, पर अज इहदी वार्ता तुहाडे सामने रख रहे हैं, क्योंकि अगे दा कल्ला जिक्र करके आपां गांह निकल जाईदा सी। अज इहदी वार्ता सुणाउणे तुहाडे सामने, इहने इतिहास विच इहदी कुरबानी की है। भाई कल्याणे ने आवाज जो मारी गुरु महाराज ने, तो गुरु अर्जन देव महाराज ने, तो भाई कल्याणा जी गुरु अर्जन देव महाराज सन्मुख जा खड़ोते। ये लकड़ का कारीगर है, लकड़ का इन्ना कारीगर है, लकड़ के बेच हाथी का दंद ते पित्तल, ये गाल के दे बेल बूटियां बना दिंदा सी लकड़ च, इन्ना एक कारीगर सी लकड़ का। हुण सिख होर भी सी, पर गुरु महाराज ने इहनू चुनिया, कारीगर सी लकड़ दा। महाराज ने आवाज मारी, कहिंदे कल्याणा जी असीं तुहाडे सपुरदिक कारज कारण लगे हां, उहनू सिरे तुसीं लाउणा। भाई कल्याणे ने हाथ जोड़े सिर झुकाया, कहिंदे महाराज मेरी की जरूरत है, मैं कुछ करन जोगा, इहो कहो वी तुसीं करवाउणा मैं करना, तुसीं करवाउणा है मैं करना है। एक गल याद रखो, जे तुहाडी पकड़ च आ जाए, जिहड़ी साडी कमाई आ साडी किरत वा ना, इह साडे कर्म बणदे ने। इह हुण आपां देखणा वी साडी कमाई पाप दी है, झूठ दी है, लोभ दी है, लालच दी है, पाप दी है। बस वह तुहाडे कर्म बने, जिहनूं गुरु नानक महाराज जी कहिंदे वी करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, तुहाडी किरत ने तुहाडे कर्म बनना। एक थां ते गुरु अर्जन देव बारह महां च कहिंदे वी किरत करम के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। जिहड़ी तुहाडी कमाई आ वह सुची है उची है किदां दी है, वो तुहाडे कर्म बनने ने। एक गुरु अर्जन ने महाराज सन्मुख सिर झुका के खड़ा हो गया, कहिंदा महाराज असी तुहाडियां कठपुतलियां, जिदां तुसी तुणका मारोगे असी उवें नच पैणा, पर महाराज कृपा करियो मेहर पर हथ रखिया सुनना। बड़े अदब दे नाल भाई कल्याणे नूं गुरु अर्जन दे महाराज किथे भेजन लगे, आ सकेत मंडी, सकेत मंडी भेजन लगे आ कुल्लू मराली वाल। कहिंदे उस पासे जाना, लकड़ दा इंतजाम करना, लकड़ वधिया होवे, बो ਬਹੁਤੀ ਗੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਖੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ।

जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। धन वाहिगुरु साहिब जी। जय श्री महला पंजवां। कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस मह मगन होत कृपा ते, महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चेतवा तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन शोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चेतवा तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन शोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारी योग सतसंगी जनों वडभागे हां जिथे आप जीयां ने। गुरु दर दे सवारियां पासों ढाडी वारां ते त्यास सरवण कीता है। सरबत दे भले दी अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक दी दात बख्शिश कीती है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने सरवण कीते ने। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूपां दी सेवा संभाल अते सोहिला साहिब पावन बाणी दे पाठ होणगे। समाप्ति तो उपरंत आप संगतां ने कड़ा प्रसाद दी देख लै के गुरु के लंगर विचों प्रसादा छक के जाण दी कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोहिला राग गुड़ी दीप की माला पहला एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावो सोहिला सवेरियो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, हों वारि जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। त्रिदान्य कीमत ना पवे तिस दाते कौन शुमार। समत सहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजने आसीसड़ियां। ज्यों वे साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पाहुचा। सदड़े नित पवन सदन हारा, सिमरिए नानक से ते अवन। राग आसा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर को वेस अनेक। बाबा जै कर करते किरत होए, सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विसोए चसिया घड़िया पैरा, थिती वारी माह होवा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के वे सराग। तनासरी महला पहला, गगन मै थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तू माल्याण लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी, आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नना एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद, गंध बेन सहस्तव गंध इम चलत मोही।
ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੁਵਾਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ ਹੋਇ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾ ਸਾਰਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਪਰਿਆ ਮਨ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਓ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸਾਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਉ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸ਼ੁਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇੜਾ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਆਓਦ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮੁੜਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੈਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੇ ਇਹ ਰਸਿ ਕਥ ਕਥਾ ਤੇ ਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੋਹਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੋਕੋ ਘਰ ਸੰਤਨ ਕੀ

प्रकार कर्म कर गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्राह्मण दे सब उत्पाती। कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह के जन्म मत खोए रहा हो। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाढ़ कहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्राह्म बिचार सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। गौड़ी कबीर जी अंधकार सो कबे न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जो पै रसना राम न कहबो, उपजत बिन सरोवत रह बो रहाओ। जस देखिए तरवर की

चरखा चक्की चक थल वर ओले बहुत अनंत लाटू मधानिया अनगाह पंखी पौध्या लैना सा सुवे चढ़ पवाइए जंत ना।

जाने जी की किश पुन दान करे सजता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु न पुछ के बहरे करे निवास।

0: सितंबर स्वामी सच में अच्छा साथ रहा, सबको सच समावे, रिक कह रहा पर पूर राम नाम देवा मैसूर, नहले पछ जाए नाम तो मुख दबाए।
1: तुझमें जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया, पार जात गोपी ले आया, बिंद्रा बन में रंग किया।

तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोय न जाने उचते ऊचा सगल समग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गात मेत नानक दास तुमरी गात मेत तुम ही नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी क्यों ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरका है गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबैनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जठै सबद हो जाए तेग बहादुर सिमरया कानून दयावे ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई होई सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसी सबोलो जी वाह पंजां प्यारियां चौं सबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शाही सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई दे के अंडठ कीता तिन्हां गुरमुख प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसी सबोलो जी वाह जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दित्ते बांध बांध कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले गए खोपरियां लुहाईयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल लई कुरबानियां कीतियां तेरे पाणी नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कह असहार दे शहीद सिक्कित के सांसवासां संगन भाई धर्म नहीं हारिया तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा सब बोलो जी वाह पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान दर खालसा सब बोलो जी वाह प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचरिया देह ते फतेह बिरद की पहज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले खालसे सब बोलो जी वाह सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेग दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल वाले खालसे सब बोलो जी वाह सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत दे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु गरीब नवास जी पातशाह पंदे सदा सहाय दतार पिता जी श्री ननकाणा साहिब और गुरुद्वारे गुरधामां तो जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणियां दे माण नदाणियां दे ताण ने उल्टियां दी औण आसरां दे आसे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप दी अपार बख्श रहमत कृपा दा सदका अमृत वेले सजी दीवाना विच आप दी लाही बाणी दे पाठ पुरन श्री आस सजी वार कीर्तन जी भोग जी की अरदास पुल जो माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होण सरबत संगता दी हाजरी तेल फुल भेटावां अपने दर ते प्रवान करदियां सिर ते मेहर भरे हथकड़ां तंदरुस्तियां बख्शणियां परिवारां विच सुख वरतौणा सरबत संगतां दे कारोबारां च बरकतां बख्शिश करनियां दरों करों सिखी सिद्ध भरोसा नामदान बख्श के निहाल करना पंथ दे सिर ते मेहर भरे हाथ रखना पवित्र हजूरी विच कड़ा प्रसाद देगा हाजरा दार प्रवान होवै प्रवान दे संत वरताउण दी आग्या बख्शो मेहर करो पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी से गुरु प्यारे मिल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੁ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।

भवदे बेकारा सहसा ए संसारा बिन नामे पत खोई। पड़ पड़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख न होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा ए बापारा। खोटे खरे सब परखियन ते सच्चे कै दरबारा राम। खोटे दरगह सुटियन उबे करन पकारा राम। उबे करन पकारा मूद गवारा मन मोख जन्म गवाया। बिखया माया जिन जगत पलाया साचा नाम ना पाया। मन मुखा संता नाल वैद कर दो खटे संसारा राम। खोटे खरे परखियन तेत सच्चे दरबारा राम। आप करे किस आखिए होर करना क्यों न जाई राम। जित पावे तित लाए सी ज्यों तेह दी वड्याई राम। ज्यों तेह दी वड्याई आप कराई वर्याम नफूसी कोई। जग जीवन दाता कर्म बदाता आपे बख्शे सोई। गुर प्रसादी आप गवाई है

0: करना किसो ना जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परमस्कार सत्संग जी, अमृत वेले सज दीवान दासियां परियां ने अलाही बाणी दे पाठ उपरंत श्री आस सखी वार दे कीर्तन सरण कीते रास प्राप्त कीता है। उपरंत सरबत दे भले लिए आप सरबत संगतां दी चढ़दी कला लई गुरु चरणा विच अरदास होई है। सतगुरु ने अमृत वेले दरबार विच सिंघासन ते विराजमान समय जो अलाही फरमान मुख वाप पितर गुरनामे बख्शी शरण कीते गए बने प्रोग्राम से पावन मुखवा की कथा विचार भाई सिपाही ज्ञानी गुरशरण सिंह जी आप सरवण करवाउणगे। सुभा बड़े प्यार सरवण करो जी। सो कीर्तन दियां क्लासां बुधवार लगदियां ने शाम नूं 6 बजे। बहुत बच्चे पुछदे ने ते पंजाबी दी क्लास ऐतवार नूं लगदी है। सो जिन्हां ने इस विच हिस्सा लैणा उन्हां नूं बेनती समय सिर आ के उन्हां मास्टर टीचर्स नाल तुसीं गलबात कर सकदे जी। और शाम नूं 6 बजे शुक्रवार दस्तार सजाउण दी भी सजा जिहड़ी है दे दी है, विद्या सिक्ख्या दित्ती जांदी है। आओ हुण सरवण करिए इस पावन पुत्र मुखवाद की कथा भाई साहब जी गुरशरण सिंह पासों। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम, वाहेगुरु साहिब जी।

जुगो जुग टल, चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोहिथ अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सजे दीवाना दीआं हाजरियां भर रहे। सन्मानयोग सत्कारयोग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब। गुरु दरबार दीआं हाजरियां भरदिआं जिंदगी दीआं इन्हां कड़ियां नूं सफला करन दा उद्दम करदे हो। मेरे तो पहला गुरु घर के रागी सिंघा ने हर रोज दे नेम मुताबक आसा की वार दे मुबारक कीर्तन दी सांझ आप संगत दे नाल पाई है। उपरंत सत्कार योग भाई साहब जी ने गुरु चरणा विच सरबत दे भले दी अरदास करके ते अज दा जो मुख वाक है उपदेश है वो आप संगत दे नाल सांझा कीता है। तो आओ सात संगत, सतगुरु महाराज दा ये जिहड़ा उपदेश है इस दी विचार नूं आरंभण तो पहला मनोबिरतियां नूं एकाग्र करदिआं सतगुरां वल्लों बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग वड़ंस विच तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज दा ये वाक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 569 अते 70 दे उत्ते सुभायमान है। धन गुरु अमरदास महाराज ने इस पावन शब्द विच एक कीमती पदार्थ वंजन दी गल आखी है। वंजन दा अर्थ हुंदा है व्यापार करना।

0: अगला वचन है जी, या देही परमल मह कंदा। बाबा कबीर साहब कहिंदे ने भी शरीर नूं बंदा सुगंधियां दे नाल महकाउंदा, असीं घरों निकलदे आ बंदा शरीर दे उत्ते सुगंधियां लाउंदा, वन सोनिया फ्रैगनस लाउंदा, ते बाबा कबीर साहब कहिंदे ने पर ये चेता रखो, शरीर नूं सुगंधियां लाया कदी भी जीवन विच सुकून नहीं मिलेगा। ता सुख बिसरे परमानंदा, इन्हां सुखां च ही बंदे ने परमानंद अकाल पुरख वाहिगुरु नूं विसारिया होया है। शरीर दे सुखां विच फस के जिहड़ा निरंकार दा सुख है उहनूं जीवन विचों बंदे ने कढ़िया होया। या देही परमल महकंदा, बाबा जी ने आखिया ता सुख बिसरे परमानंदा। अगला बचन है जी, कोटा एक शरीर एक निका जा खूह है। कोटा दा अर्थ हुंदा खूह, बंदे दा शरीर की है खूह है। कोटा एक पंच पनिहारी, इत्थे पंज चरखड़ियां लगियां, जिवें पहला हुंदा सी खूह दे विचों उह पाणी भरन वालियां जिहड़ियां सी उह लगियां हुंदियां सी, टिंडा उहनूं कहिंदे सी, उह इदां पाणी घर भर भर बाहर लियांदियां सी खूह दे विचों। ते बाबे कबीर ने आख्या, कोटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परै मतिहारी। बाबे ने आख्या भी मेरी जिहड़ी मत है ना, ये गुरु दी विचार नालों टुट के लज तो सखनी हुई पी है, शर्म नहीं हैगी, मत नूं शर्म नहीं हैगी, वह लज टुटी हुई है। ते वकारां च फसी हुई मेरी मत जिहड़ी है, वह ज्ञान इंद्रियां दे राहीं वकारां दा सुख लै रही है, वकारां दा सुख लै रही है। अखीरली पंक्ति है, बाबा कबीर साहब ने बख्शिश कीती, कहिंदे कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कुटा ना पनिहारी। बाबा कबीर साहब कहिंदे ने हुण जदों तो मेरी बुद्धि विचार वाली बनी है, मैं गल्लां नूं समझणा ते सोचना शुरू कीता गुरु दी मत लै के, हुण मेरी बुद्धि जाग पई है, इस करके इन्हें शरीर का मोह जिहड़ा है वह छड़ दिता है, तो विकार इंद्रे जिहड़े ने हुण नहीं भोगते, इंद्रे जिहड़े ने विकारां नूं नहीं भोगते। सो बाबा कबीर ने इस वाक दे विच सानूं इह गल समझाई भी भाई असली मौत बंदे की सच नूं जीवन विच्चों कढ़िया हुंदी है, जे बंदे दे जीवन विच सच्ची विचार होवे उह बंदा जिउंदा है, अदरवाइज इत्थे सारा ही संसार मरिया होया है। ते बाबा कबीर साहब ने एक गल जिहड़ी बड़ी अहम आखी ते समाज तों हट के आखी, जदों ते आपां दुनिया वल वेहने आ साडा बिहेवियर दुनिया नाल दा ही हुंदा है, समाज तों हटवीं दुनिया दे दायरे तों हटवीं गल आपां सुण वी नहीं सकदे, साडी मुश्किल इह है असीं की सुनना चाहुंदे आ, जिहड़ी गल दुनिया दे दायरे विच होवे उह तों बाहर नहीं बंदा सुण सकदा। हुण दुनिया दा दायरा इह कहिंदा है वी जदों कोई मरदा है ते उदों सोग करो, ते बाबे कबीर ने उस दायरे तो बाहर जाके गल आखी, आखिया तुसी किन्नू मौत समझण डे जो, किन्नू मौत समझण, आखिया मैं किसी दे मरे दा सोग तां करां जे मैं आप मरना ना होवे, जदों मैं भी मर जाणा फिर सोग कादा। ते दूजी गल उन्होंने आखी, आखिया फिर अगली गल तुसी कहिंदे हो साह चलदे ने ते बंदा जीव रहा है, नहीं बंदा जीउंदा ही उह है जिहदे अंदर नेकी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਛਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਆਰਜਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੀ ਅਰਜਾਰੀ, ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਬੰਦਾ ਡੱਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਪ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੀਵੇ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕਾ ਵਰਨਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈਚਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਜੂਠਣ ਮੈਂ ਖਾਏ ਪਾਏ, ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜੇਤਾ ਬਿਹਾਰ, ਜੋ ਮਿਰਥਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ੰਗਾਰ, ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਸੁੱਖ ਸੁਪਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: सच पीत।
1: मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पतित बहु मूच।
0: ओ श्याम जन का पौ व्यापे, अनेक जतन कर कृष्ण।

0: हे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमला
1: प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा
0: दीने हस्त पाव का नित रसना तिसे त्याग।

जो शरणा स्वस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने चंदन ले पुतारे तोए गर प्रीत पसम संग हुए करतूत पशु की मांस जात लोक पचा

0: असव हस्त असवारी मत पव को कबू ना बिसारी
1: प्रसाद भाग मिलक तना राग प्रोय पे अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद ते त्याई
1: जो एक
0: ये पसा करे पुन बोदान मन आठ पैर का तिसका त्याग।

0: गुर प्रसाद नानक जस कहे
1: जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद देखे बिस्माद
0: जय प्रसाद बोले अमृत सना जय प्रसाद सो सहजे बसना
1: जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले
0: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद।

0: प्रसाद तेरे कार्ज पूरे, तिसे जान मैं सदा हजूर है।
1: जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू दास राच।
0: जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपे जप सोए।

0: ना साध प्रभु बने आई,
1: साध के संग जग भूत आवे, साध के संग सदा सुख पावे,
0: सास बस्तर गोचर लहे, साधु के संग अजर सहे,
1: साध के संग बसे थाने ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध संग दड़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के करवान,
0: साध संग सब कुल धारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे,
1: साधु के संग सोतन पावे, सते सबको बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा,
1: साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम, ना साध के संग सफल जन्म,
1: साध के संग नहीं कुछ काल, दर्शन भेद होत निहाल,
0: साध संग कलु खतरे, साध संग नरक पर हरे,
1: साध के संग यमन सेला, साध संग बिछड़ चर मिला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना व्यर्थ जावे,
1: पार ब्रह्म साध रद बसे, नानक उतरे साध सुन रसे,
0: साध संग सुनु हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ,
1: साध के संग नमते विसरे, साध संग सब पर निस्तरे,
0: साध संग लगे प्रमिटा, साधु के संग काट कर डिठा,
1: साध संग में आगे अकारी, साध संग रमई हमारी,
0: साध संग मिटे सब रोग, ना साध पेटे संजोगा,
1: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने,
0: साध उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही पर पूरा,
1: साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा उते ऊंची, साध की

0: ब्रह्म ज्ञान का ही वे गुनाओ नान जो भाव का सह सुभाओ
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल निर्मला जैसे मैं लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तरु पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी होते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैं ब्रह्म ज्ञानी ते कस बुरा न पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा

0: सगल त्यागे दुष्ट का संग।
1: महादेव विष्णु सगला परमा कर पूजे सगल पार ब्रह्मा।
0: साध संग पापा मल खोवे तिस भगौती की मत उत्तम।

0: कई कोट रंग अज्ञानी,
1: कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपिघातम निकोर,
0: कई कोट पर धर्म कोई रे, कई कोट पर दुख ना करे।

0: जोगा जोत पावे सोई होगा।
1: किन में ताप ताप नारा अंध नहीं किस पर भरा।
0: हुक में तार आधार आवे हुक में उपजे हुक्म समावे।
1: हुक में ऊंच नीच व्यवहार हुक में अति रंग प्रकार।
0: कर कर वेखे अपनी बड़ियाई कर कर वेख कर कर देखे अपनी बड़ियाई। नान समे रहा समाई
1: प्रभावे मानन गर पावे प्रभावे तापा छतरावे।
0: प्रभावे बिन सास्ते रखे प्रभावे ता हर गुण पख है।
1: प्रभावे ता पति उदारे आपन करे आपन विचारे।
0: दोहा सिरियां कहे आप स्वामी केले बिन से अंतर जामी।
1: जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर ना आवे।
0: मानक ते क्या होई आवे जो तुझ पावे सोई करावे।

0: इतना ही साथ, कर्ण करावन सबको नाथ।
1: आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष भावे सोई पुजियो।
0: काबू ऊंच नीच में बसे, काबू सोग हक संग हसे।

0: क्रोध विकराल, काबू सब की हो तरवाल। काबू अब गीत में आवे, काबू पला पला कहावे।
1: प्रभु राखे तिम ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे।
0: काबू होए पंडित करे बखियान, काबू मोन तारी लावे ध्यान।
1: काबू ताटे ते स्नान, काबू से साधक मुख ज्ञान।
0: काबू कीट हस्त पंग तंग होए जिया, अनक जोन पर मे पर मिया।
1: नाना रूप जो सागी दिखावे, जो प्रभावे तिवें जावे।
0: जिस भावे सोई होए, नानक दूजा।

0: का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन शोभा तहीन।
1: संत के दुखन के न कोई, संत के दुखन ता कष्ट होए।
0: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतर।
1: संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन का ग्यो लवे।
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए।
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब कुछ चले।
0: संत का दुखन तेज सब जाए, संत का दुखन नीच न चाहे।
1: संत दुखी का था को नाए, नानक संत पावे तो विगत पाए।
0: संत का निंदक महातताई, संत का निंदक है टिक न पाई।
1: संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर महा।

0: संत की दुख ना सुख ते डरे,
1: संत के दुखी को नाई डाओ नानक संत पाई तले मिलाए,
0: संत का दुखी अध बीते टूटे, संत का दुखी कि

0: दोखी धर्मते रहत संत दोखी सद मिथ्या कहत
1: करत नगत रूपया नानक जस भावे सोई थिया
0: संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दोखी को दरगाह मिले सजाए
1: संत का दोखी दास है काहे संत का दोखी ना मरे ना जिवाए
0: संत के दोखी की पूजे ना आशा संत का दोखी उठ चले नरा

0: सो संत सहेला नहीं डुलावे।
1: जिस पर अपना कृपा करे सो सेवको किसने डरे।
0: ऐसा सात सदृष्टाया अपने कार्य में आप समाया।
1: सोद सोद सोद सीजिया गुर प्रसाद सब बुझिया।
0: अब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल।
1: न कुछ जन्मे न कुछ मरे आपन चलते आप ही करे।
0: आवन जावन दृष्टान दृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ।
1: आपे आप सगुण में आप अनेक
0: अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहो ब्रह्मंड।

0: जाने हो
1: नंद रूप मंगल सजा के सर्व तो सुनिया करता के
0: राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी
1: क्या भगत सो पाया नाथ इस पुरखा के अंत

0: जपन नानक प्राप अलख बिडाणी।
1: बार बार बार प्राप जपिए पी अमृते मन तंत्र पिए।
0: नार तन जन गुरमुख पाया तिसका अवर नहीं दिसताया।
1: नाम तन नाम रूप रंग नामो सुकर नाम का संग।
0: नाम रस जो जान तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने।
1: उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन के सतकाम।
0: बोलो जस जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की निदात।
1: करे भगता तम कह जाए प्रभ अपने चोरे आसमाए।
0: जो होया हो वसो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने।
1: तिसकी महिमा कौन बसानो तिसका गुण गए एक न जानो।
0: आठ पै पै बसे हजूरे कह नानक सही जन पूरे।
1: मन मेरे तन की ओट ले मन तन अपना तन जन दे।
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता।
1: तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्शन पा मिटावे।
0: अवर स्यानप शगली शाड़ ते

0: राष्ट्रपति सतगुर सिखी करे प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सतगुर सिखे बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हाटे
1: सतगुर सिखो नाम तन दे गुर का सिख वडभागी
0: सतगुर सिखा हलत पलत सवारे नान सतगुर सिखो जिए नाल समारे
1: गुर के ग्रह सेवक जो रे गुर की आज्ञा मन में से
0: आपस को कर कछु न जनावे हर हर नाम दे सद त्यावे
1: मन विच सतगुर के पास ते सेवक के काज रास
0: सेवा करते होए नेकामी जिसको होत प्राप स्वामी
1: अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले
0: बीस बीस गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने।

0: जाने
1: पूरा गुरु आखे होलिया का मंत्र अमर दिस पेके हुए संत
0: गुण बेअंत के मत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसे मिलाए
1: ये बा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक
0: प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वय सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई
0: अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल सिमरे
1: सत बलिहारी सत गुरी अपने

0: ना ले पा मन में राखे हर हर एक
1: अंधकार दे प्रकाश नानक परम भगत नाचे
0: तब तो माय थॉट वरताई नंद पया दुख न ठे पाई
1: जन मन के मिटे देसे साधु के पूर्ण परदेसे
0: हो चुका निरपो होए बसे सगल व्याध मन ते खेन से
1: जिसका शासन के पातारी शासन जब नाम रारी
0: हित पाई चुके प्रभु गमन सुन नानक हर हर जसन
1: निर्गुण अवसर गुण भी होई कला तार जन सगली मोई
0: अपने चित प्रभ आप बिनाए अपने कीमत आपे पाए
1: अरविंद दूजा नहीं कोए सर्वंदर अंतर को सोए
0: बोध पर रूप रंग पे पर गा साध के

0: भक्त करो प्रभु के नित नीत। प्रभु की दिस मा सुख होए हर पावे बिरला कोए।
1: जाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने।
0: सुपा परे प्रेम रस रंग उपजे जाओ साध के संग।
1: परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगास अंधे लिव लाग।
0: बड़ भागी जपे।

0: इसको गनी
1: अब एक है हर अगंपार, तब नरक स्वर्ग को कौ अवतार।
0: जब निर्गम पर सहस भाए, तब से सत को गत ठाए।
1: जब आप आप अपनी ज्योत रहे, तब कवन ने डर कवन कत डरे।
0: अपन लेता करने हार, नानक ठाकर रम्य पार।
1: अविनाशी सुख अपने आसन, तय जन मन को का विनाशन।
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए, जब चमकी त्रास को के सोए।
1: जब अवगत गोचर प्रवेक, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा।
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे।
1: अपने आप आप ही अचर जा, नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा।
0: निर्मल पुरख पुरख पद होता, तय बिन मैल को क्या तोता।
1: जय निरंजन रंग का निर्वाण, तय कौन कौ मान कौ अपमान।
0: जय स्वरूप केवल जगदीश, तय चित्र लगत को गीश।
1: जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे, तय किसे भूख कवन तपतावे।
0: कर्ण रावण करने हार, नानक करते का नाय सुमार।
1: जब अपनी शोभा अपने संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई।

0: जिन के लागे चिंता।
1: जय अपने पाप पतिया रे, कहे कौन कते को सुनने हारा।
0: ओ ब्यानो जते उचा, नानक आप सो आपे पहुंचा।
1: जय आप रचियो परपंच कार, तै गुण में किनो बिस्तार।

0: भूखा लगा मीठा
1: सब सामग्री कट माहे अनेक रंग नाना दिसाई
0: नौन दे अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम
1: सुन समाद नतन आद कहन जाए जन समाद
0: दिन देखे आज से आप दिखाए नानक ते जन सो जी।

0: अनंत जना सुने सब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
1: रहत सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने
1: अंदर बसे बार भी होई नानक दर्शन देख सम होई
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: तिस भावेता करे विस्तार तिस भावेता एक ओंकार
0: कला लखी न जाए जिस पावे तिस लै मिलाए
1: कवन नेत्र कण कहिए दूर आपे आपा भरपूर
0: तर गज से आप जनाए नान ते जन आप बुझाए
1: सर्व भूतिया वरतारा सर्व नैना पेकन हारा
0: सकल समग्री जा का तना आपन जा साप ही सुना
1: आवन जाने का खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया
0: के मद अलप तो रहे जो किश कहना सो आपे कहे
1: आगे आवे आगे जाए नानक जा पावे तन ले समाए
0: सुनाही बुरा और कहो किने किस करा
1: आप लाकर तू तत नीकी आपे जाने अपने जी की
0: आप साज तारी सब सा

आपे शब्द समाहा, आपे लेखन आप लेखारे, आपे लेख लेखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, अन दिन अनद होवै वड भागी, लै गुर पूरे।

ही शांत पाई रहाउ। ज्यों चातरक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाई। गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया भाई सुभाई। मनमुख भूखे दैदिस डोलै, बिन नावै दुख पाई। जन्म मरै फिर जोनी आवै, दरगै मिलै सजाई। किरपा करै तां हर गुण गावै, हरस अंतर पाई। नानक दीन दयाल भय है, त्रिश्ना शब्द बुझाई। सोठ महला चौथा पंच पदा, आचर चरै तां सिद्ध हुई। सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम कटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को दे वडियाई। गुरमत राम नाम प्रगासो, सदा रहो शरण आई रहाओ। एहो संसार सब आवण जाना,

बीज बेखाई, माद वे ऐसी देहो बुझाई, सेवो साध गहो ओढ़ चरना, न बिसरै मोहत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित, तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आन तू रचिया, और ज्यो संग बैराई, सोग न व्यापै आप न थापै, साध संगत बुद्ध पाई, साकत का बकना इउं जानो, जैसे पवन चुलाई, कोट पराध अशा दियो ए मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन सरन आयो, प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलत्र लोग ग्रह बनता, माया सन बंदे ही, अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या असने ही, रे नर काहे पपोर हों दे ही, ओढ़ जाहे गो धूम बादरो, एक भज हो राम स्नेही राव, तीन संगया कर दे ही कीनी, जल कूकर पसमेही, होए आमरू गृह में बैठा, करण कारण बिसरोही, अनक भांत कर बणिए साजे, काचे ताग परोही, टूट जाए गो सूत बापुरे, फिर पाछे पछतोही, जिन तुम सिरजे सिरज सवारे, तिस त्यावो दिन रहने ही, जन नानक प्रभ किरपा धारी, मैं सतगुरु ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा भेट्यो वडभागी, मन है पया परगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाजै सुख सहजा, कर आनंद हमारे रहाओ, अंतर जामी करने हारा, सोई खसम हमारा, निरपो भये गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधारा, सफल दर्शन अकाल मूर्त, प्रभ हैपी होवन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासी, नानक गुरपुरा भेटियो, सगले दुख विनासे। सूरठ महला पंजवा, सुखिए को बेखे सब सुखिया, रोगी के भाणे सब रोगी, करन करावन हार स्वामी, आपन हास संजोगी, मन मेरे जिन अपना भरम गवाता, तिसके भाणे कोई न भूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाओ, संत संग जाका मन शीतल, हो जाने सगली ठांडी, होमे रोग जाका मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री बढ़िया, ताको सर्व परगासा, अज्ञान अंधेरे सूझ सनाही, बहुड़ बहुड़ परमाता, सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक हो सुख मांगे, जय कीर्तन तेरा साधु गावे, तह मेरा मन लागे। सोरठ महला पंजवा, तन संतन का धन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्ब कुशल तव थिया, संतन बिन अवर न दाता बिया, जो जो शरण पर साधु की, सो पार ग्रामी किया रहाओ, कोट पराध मिटै जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई है, ईहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग बड़ भागी पाई है, रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जन की केतक उपमा कही है, अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है, निर्गुण नीचा नाथ अवराधी, होड संतन की आही, भूड तम हो ग्रे अंध कूप में, नानक लिहो निभाई,

नाही, चरण धूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊज बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देखा खाई, सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जहाँ को तुदे आ बुझाई, गुरु प्रसाद मिट्यो अज्ञान, प्रकट पय सब ठा।

हम तेरी सरनया। जह भंडार गोबिंद का खुलिया, जेह प्रापन तै लिया, एक रतन मोको गुर दीना, मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमर दीनो, ता अटल अमर नामुआ, भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लिया। सोठ महला पंजवा, चरण कमल स्यों जाका मन लीना, सहजन तृप्त अकाई, गुण अमोल जिस हृदय न बसिया, ते नर तृष्ण त्रिखाई, हर आराधे अरोग अनदाई, जिसनु विसरै मेरा राम सनेई, तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जेह जन ओट गही प्रभ तेरी, से सुखी ये प्रभ सरणे, जे नर विसरिया पुरख विधाता, ते दुखिये मह गणे। जे गुरमान प्रभु लिव लाई, ते महा आनंद रस करिया, जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाई, ते नरक घोर मैं भरिया। जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही बनतारा, नानक सह पकरी संतन की, हृदय भये मगन चरनारा। सूरठ महल

तुम दान देहो मेरे वाना, तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जन सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला, राग संतन कै पाछे, सोठ महला पंजवा घर दूजा, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम रख नहारे, पावक

आप पुरख निर्वाणी सोरठ महल्ला पंजवा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरणा, संत हमारी ओट स्थानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बन आई, पूर्व लिखिया पाई, इहो मन तेरा भाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खटिया, हर भगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहाँ करे गो, जो फाट्यो सगलो लिखा। महा आनंद भई सुख पाया, संतन कै प्रसादी, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रते विसमाधि, सोरठ महल्ला भंजवा। जेती समग्री देखो रे नर, थेती

ढायो, आनंद मंगल विश्राम। दुख शोक का ढायो डेरा, आनंद मंगल विश्राम। मन बांछत फल मिले अचिंता, पूर्ण होए काम। इहां सुख आगे मुख उजल, मिट गए आवन जाने। निरप पए हृदय ना वसिया, अपने

सुपन मनोरथ ताके कछ ना वढाई। राम ना राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई। हौ हौ करत बिहाय अवरदा जी को कामना कीना। तावत तावत नै त्रिवसास्या

कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा घर दूजा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मैं किया ऊच नीच मैं जोत समाणी घट घट माधो जिया संतो।

0: बिसरत जगत जीवन कैसे पावे। सोरठ महला पंजवा।
1: बिरला पावै कोई मेरे मन जप गोपाल प्रभ सोई जाकी सरण पया सुख पाइय बाहुड़ दुख ना होई रहाओ। वडभागे सा संग प्राप्त तिन भेट दुरमत खोई तिनकी तुर नानक दास बांछै जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा। जन्म जन्म के दुख निवारे सुका मन साधारे दर्शन भेट होत निहाला हर का नाम विचारे। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा रहाओ। समर्थ पुरख पुरन विदाते आपे करने हारा अपना दासर आप उबारिया नानक नाम अदारा। सोरठ महला पंजवा। अंतर की गत तुम ही जानी तुझी पाहे निबेरो बख्श लैओ साहेब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण मोहे चेरो रहाओ। बेशमार बेअंत स्वामी उचो गुनी गहेरो काट सिलक कीनो अपनो दासरो तो नानक कहा निहोरो। सोरठ महला पंजवा। भय कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाय स्थिर पय लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाए। भलो समूर्त पूरा सा सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ। मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई हर नाम निदान नानक जन पाया सगली इच्छ पुजाई। सोरठ महला पंजवा। गुर के चरण बसेरिद पीतर सुभ लखण प्रभ कीने पई कृपाल पूरन परमेसर नाम निदान मन चीने। मेरो गुरु रखवारो मीत दून चौनी देव डियाई सोभा नीता नीत रहाओ। जी जंत प्रभ सगल उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वड्याई नानक सत बलिहारे। सोरठ महला पंजवा। संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम पार बिलछ बिनोद आनंद सुख मानो घाए जीवो सिख परवार। हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित चढ़ लंगो बिख संसार रहाओ। भय कृपाल पूरन अविनाशी आपे की निसार पेख पेख नानक बिगसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा। गुरपुर अपनी कल तारी सब कट उपजी दया आपे मेल वडाई किन्नी कुशल खेम सब पया। सदगुरु पूरा मेरे नाल पा ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ। अंतर बाहर थान थनंतर जतकत पेखो सोई नानक गुरु पायो वडपागी तेजेवड़ अवर ना कोई। सोरठ महला पंजवा। सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हारे राख्यो बारिक सदगुर ताप उतारिया। उबरे सदगुर की सरनाई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाओ। करमे सु बहर फुन सुखा प्रभ अपने पए दयाला नानक बिगन ना लागे को मेरा प्रभ हुआ कृपाला। सोरठ महला पंजवा। साधु संग पया मन उत्तम नाम रतन जस गाए मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई। हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज तुन उपजी रोगा कान मिटाई रहाओ। क्या गुण तेरे आख वखाणा कीमत कहन ना जाई नान भगत पय अविनाशी अपना प्रभ पया सहाई। सोरठ महला पंजवा। गए कलेस रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा तारी आठ पैर आरो दू स्वामी पूरन काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो पाई मेरे को प्रभ आगे अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम परोसा कहो नान गुर पूरा पेट्यो मिट्यो सगल अंदेसा। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सदगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरु पूरा सुखदाता करण कारण समर्थ स्वामी पूरन पुरख विदाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गाओ गुरु नानक पय दयाला जय जयकार पय जग पीतर हुआ पा ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा हमरी गणतना गणिया काई अपना बिरद पछाण हा दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान। साचा साहिब सद मेहरवान बंद पाया मेरा सतगुरु पूरै होई सर्ब कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान। सोरठ महला पंजवा दुर्त गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया पा ब्रह्म प्रभ कृपा तारी अपना बिरद समारिया। होई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन देहो सुखाली रहाओ। पतित उदारण सतगुरु मेरा मोहे तिसका परवासा बख्श ले सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा बख्शिया पा ब्रह्म परमेसर सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरणी उबरे कार्ज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुरु पूरे अपनी कृपा तार रहाओ। सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राख्या वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत पाख्या। सोरठ महला पंजवा पए किरपाल स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुर ताप गवाया पाई ठांड पई संसार। अपने जी जंत आपे राखे जमे कियो हटतार हर के चण हृदय उरतार सदा सदा प्रभ सिमरिय पाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ। तिसकी सरणी उबरे पाई जिन रचिया सब कोई करण कारण समर्थ सो पाई सच्चे सच्ची सोए। नानक प्रभु त्याय पाई मन तन शीतल होए। सोरठ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदेड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा तारी पा ब्रह्म प्रभ पय दयाला दुख मिटिया सब परवारी। शरम निदान मंगल रस रूपा हर का नाम अदारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला हुआ तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोवा रहाओ। ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई सात संगत ते सफल पाए सतगुर कैबल जाई। हलत पलत प्रभ दो वैसवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत साई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई। पाप ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्ब दयाल रहाओ। अंधे नानक नाम त्याई जीव प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारक पित माता। सोरठ महला पंजवा करती जा चौपदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं ससा चुकाया सिख दारो नह पतियाया उमरा वो आगे चेरा मिल राजन राम निबेरा। अब ढूंढन कतो ना जाई गोबिंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा लब्द अपनी पाई ता कत आवै कत जाई ते साच न्याय नबेरा उहां सम ठाकुर सम चेरा अंतर जामी जानै बिन बोलत आप पछानै सर्ब थान को राजा तेह अनहद शब्द अगाजा तिस पे क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हृदय नाम वसाय हो कर बैठे गुरु त्याय हो गुरपुरै सच कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना अनद सु कल्याण मंगल स्यों कर आए कर इस नाना रहाओ साची गुर वडियाई ता की कीमत कहन ना जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट मन ओ माहा सगल प्राचत लाथे मिल सासंग कै साथे गुण निदान हर नामा जब पूर्ण होए कामा गुर की नौ मुक्त द्वारा सब सृष्ट करै जयकारा नानक प्रभ मेरे साथे जन्म मरण पैला थे सोरठ महला पंजवा गुरपुरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रहे आए अनद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अंदिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोबड़ पागी पाए कोड़ जन्म के किल बिखना से हर चरणी चित लाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जन सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन विनाशन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप ये सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहिरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पए दयाला जब आनंद रहो गुर चरणा पौ कथे नहीं प्रभ सरणा रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अबिचल नीव उसारी बलतन तकिया तेरा तू भारो ठाकुर मेरा जिन जिन सा संग पाया सो प्रभ आप त्राया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सा सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक गाय सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिल्यो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहद बिना रहाओ हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लोकाने जग जीवन दाता पाया हर स्क रस्क गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा मन पूरन होई आसा ज पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे निरपो नाम त्याया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठाड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे गुरपुरै है राखी शरण सच्चे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला सांस सहज सुख खिन में उपजे मन हुआ सदा सुखाला रहाओ हर हर नाम दियो दारू तिन सगला रोग बिदारू अपनी कृपा तारी तिन सगली बात सवारी प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया गुर का शब्द पयो साखी तिन सगली लाज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा जप नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी सोरठ महला पंजवा विचकर्ता पुरख खलोआ वालना विंगा हुआ मजन गुर आंदारा से जप हर हर किल विखना से संत हो राम दासरो वर्णिका जो नावै सो कुल तरावै उदार हुआ है जी का रहाओ जय जयकार जग गावे मन चिंदड़े फल पावे सही सलामत नाए आए अपना प्रभु त्याए। संत सरोवर नावे सो जन परमगत पावे मरे ना आवे जाई हर हर नाम त्याई। यो ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मिटाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म निबाही पूरी काई बात ना रहिया उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर हर नाम सुमारे। अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ। वड भागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे सेवड़ पागा। हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हार रख लिया। हर दर्शन प्राण अदारा एह पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै चरनी लाया हर संग सहाई पाया जह जाइए तहां सोहेले कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुबाई मन चिंदे सगले फल पावो जीव कै संग सहाई रहाओ। नारायण प्राण अदारा हम संत जना रे नारा पतित पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने। पा ब्रह्म करे प्रतपाला सद जीव संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाये बोहरना जोनी पाये। जिस देवे पुरख विधाता हर रस तिन ही जाता जम कंकर नेड़ ना आया सुख नानक सरणी पाया। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै कीती पूरी प्रभ रविया रहिया पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पा ब्रह्म विठों कुर्बाना। गुर के चरण कवल रिद तारे बिघन ना लागे तिल का कोई कार्ज सगल सवारे रहाओ। मिल साधु दुर्मत खोए पतित पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते। गुण गोविंद नित गाये सा संग मिल त्याये मन बांचत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए। गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया। राग सोरठ महला पंजवा दै दिस छतर मेघ कटा कट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नहो नैनो पिर परदेस सिदायो। हुण नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतुर पात्रो आयो रहाओ। क्यों बिसरै इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर चरकै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो। हौ हो पीत पयो है बीचो सुनत देस निकटायो पां पीरी के पात पर दो बिन पेखै दुरायो। पयो कृपा सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो कहो नानक हूं मैं पीत गुर खोई तो दयार बिठलो पायो। सब रहयो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्व गुना निदरायो रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुख दारी करम ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी। नाम परयो भगत गोविंद का एहो राखो पैज तुम्हारी। हर जियो निमाणिया तू माण नी चीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ। जैसा बालक पाए सो पाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु पाती बहुड़ पिता गल लावे। पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब बिद जाने ता किस पे आख सुनाइए। कहने कथन नापी जय गोविंद हर पावे पैज रखाइए अवर ओट मैं सगली देखी क तेरी ओट रहाइए। होहे दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बिनंती पूरा सदगुर मिले मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय अनंदा दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरे दियो उपदेसा जप पोजल पार उतारा रहाओ। तू है मंत्री सुने प्रभ तू है सब किछ करने हारा तू आपे दाता आपे भुगता क्या हो जंत विचारा। क्या गुण तेरे आख वखाणी कीमत कहन ना जाई पेख पेख जीवै प्रभ अपना अचरज तुम्हें बढ़ाई। तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी पत मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बाछो संता तूरी। सोरठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारे प्रभ सबे काज सवारे हर अपनी कृपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी। अपने दास को पयो सहाई सगल मनोरथ कीने करते ऊनी बात नाकाई रहाओ। करते पुरख ताल दिवाया पीछे लग चली माया तोट ना कथों आवे मेरे पूरे सतगुर पावे। सिमर सिमर दयाला सब जी पये कृपाला जय जय कार गोसाई जिन पूरी बणत बनाई। तू पारो स्वामी मोरा एहो पुन पदार्थ तेरा जन नानक एक त्याया सर्ब फला पुन पाया। सोरठ महला पंजवा करती जा दो पदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इसनाना गुरपुरे कीने दाना। सब कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे रहाओ। साध संग मल लाथी पा ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आद प्रख प्रभ पाया। सोरठ महला पंजवा जित पा ब्रह्म चित आया सो कर देव साया सुख सागर गुर पाया ता सैसा सगल मिटाया। हर के नाम की वड्याई आठ पहर गुण गाई गुरपुरे ते पाई रहाओ। प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुरपुरे ते जानी। सोरठ महला पंजवा आग्या सुख गुर दिया पौछे कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय त्याया। अपने सदगुर की वड्याई मन इच्छे फल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ। जी जंत सपय दयाला प्रभ अपने कर दीने सहज सुभाए मिले गोपाला नानक साच पतीने। सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लगाए कर पागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विदाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेवना बिरथी जासी अनद करे तेरे दासा जब पूरन होई आसा। सोरठ महला पंजवा गुर अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो तिस बिन अवर ना कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ। प्रभ अपने वर दीने सगल जीव वस कीने जन नानक नाम त्याया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्व कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सदगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई रहाओ। जो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राख्या जन नानक साच सुपाख्या। सोरठ महला पंजवा। सोई कराए जो तुद पावै मोहे स्याणप कछु न आवै। हम बारक तो शरणाई प्रभ आपे पैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जे जंत तेरे तारे प्रभ डोरे हाथ तुम्हारे जे करावै सो करना नानक दास तेरी सरणा। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके पागा। मिल सासंग हर त्याया आठ पहर अरा दियो हर हर मन चिंदेरा फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकुर जाग्या राम नाम मन लाग्या। मन तन हर दर्श समावै नानक दास सचे गुण गावै। सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया। मंदा को ना अलाए सब जय जय कार सुनाए। संतो साची सरणन स्वामी जी जंत सब हाथ तिसै कै सो प्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे। पतित पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना। सोरठ महला पंजवा पावरम साज सवारिया एहो लहुड़ा गुरु उबारिया। आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। सुब चितवन दास तुम्हारे राखे पैज दास अपने की कार्ज आप सवारे रहाओ। मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण कल जिन तारी। नानक सरणी आया मन चिंदला फल पाया। सोरठ महला पंजवा सदा सदा हर जापे प्रभ बालक राखे आपे। सीतला ठाक रहाई बिगन गए हर नाई। मेरा प्रभ हुआ सदा दयाला अरदास सुनी। भगत अपने की सब जीव पया किरपाला रहाओ। प्रभ करण कारण समराथा हर सिमरत सब दुख लाथा। अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सुख सवंती। सोरठ महला पंजवा अपना गुरु त्याए मिल कुशल से तीकर आए। नामै की वडियाए तिस कीमत कहन ना जाए। संतो हर हर हर अरादो हर अराध सबो किछ पाइए। कार्ज सगले साधु रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी। जन नानक नाम त्याया तिन सर्ब सुखा फल पाया। सोरठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा। पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी। संतो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रव रहया सबनी जाई रहाओ। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना। सोरठ महला पंजवा एथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। दास अपने आप राखे कट कट सबन सुपाखे। गुर के चरण ऊपर बल जाय दिनस रैन सा सा समाली। पूरन सबनी थाई रहाओ। आप सहाई हुआ सच्चे दास सच्चा टोआ। तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरणाई। सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे पाणा ता जपया नाम रमाणा। गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी। हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई फल पावे। बिरथी आस ना जाई रहाओ। कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावै। प्रेम भक्त ताका मन लीना पा ब्रह्मन पावै। आठ पैर हरका जस रवणा बिखै ठगुरी लाथी। संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पे साथी। कर गहे लीने सर्वस दीने आपे आप मिलाया। कहो ना सर्व थोक पूरन पूरा सतगुर पाया। सोरठ महला पंजवा गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रहन छारी इस आग्ञा को ना टिके विकारी गुरपुरे एहो गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा जो सिमरै तिसकी गत होवै उदरै सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया एहो पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मिटाया सपा ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै पूरी कीनी बख्श अपनी कर दीनी नित आनंद सुख पाया थाव सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती गुरपुरै कृपा कर दीनी विरलै किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावो पाई ओ सफल सदा सुखदाई नानक नाम त्याया पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवा गुरपुरा अरादे कार्ज सगले सादे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे। संतो राम जपत सुख पाया संत स्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाओ। गुरपुरे की बाणी पा ब्रह्मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल कथ कहानी। सोरठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवै त्यों हर जन हर गुण गावै अपने काज को क्यों अलकाइय जिस सिमरन दुर्गै मुख उजल सदा सदा सुख पाइय रहाओ। ज्यों कामी काम लोभावै त्यों हर दास हर जस पावै ज्यों माता बाल लपटावै त्यों ज्ञानी नाम कमावै गुरपुरे ते पावै जन नानक नाम त्यावै। सोरठ महला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक कै मुख छाया पूरे गुर पहराया बिनसे दुख सबाया। संतो साचे की वडियाई जिन अचरज सोभ बनाई रहाओ। बोले साहिब कै पाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई। सोरठ महला पंजवा पर अपना हृदय त्याय कर सही सलामत आए संतोख पया संसारे गुरपुरै लै तारे। संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भक्त की गणत ना गणी राखै बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उर तारे तिन सबे थोक सवारे गुरपुरै तुस दिया फिर नानक दुख नाथिया। सोरठ महला पंजवा हर मंतन वस्या सोई जय जयकार करे सब कोई गुरपुरे की वडियाई तां की कीमत कही ना जाई। हो कुर्बान जाई तेरे नावै जिसनों बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता प्रवासा तेरा नानक प्रभ सरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेसर बणत बनाई फिर डोलत कत हूं नाही। साचे साहिब स्यों मन मान्या हर सरब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भक्त करे प्रतपाला अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम त्याई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवै नेरे कंठ लाए प्रभ राखै सतगुर की सच साखै। गुरपुरै पूरी कीती दुश्मन मार बिडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ सरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकी सरनी पाइय दर्शन पेड़त होत आनंदा दूख गया हर गाइय। हरस पीव पाई ना जपो नामो आरादो गुरपुरे की सरनाई रहाओ। तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई नानक की विनंती प्रभ जी नाम रहा लिव लाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पितर शब्द गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गोसाई तू समर्थ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाए सदगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सदगुर दिया दिलासा जीण कर आए शोभा सेती पूरन हो यासा। पूरा गुर पूरी मत जाकी पूर्ण प्रभ के कामा गुर चरनी लाग त्रयो पव सागर जप नानक हर हर नामा। सोरठ महला पंजवा पयो कृपाल दीन दुख पंजन आपे सब बिद थाटे खिन में राख लियो जन अपना गुर पूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सद त्याय सगल क्लेश मिटे इस तंते मन चिंदेला फल पाइय रहाओ। जी जंत जाके सब कीने प्रभ ऊंचा अगम अपारा सा संग नानक नाम त्याया मुख उजल पय दरबारा। सोरठ महला पंजवा सिमरो अपना साई दिनस रैन सद त्याई हाथ दे जिन राखे हर नाम महारस चाखे। अपने गुर ऊपर कुर्बान पय कृपा पूरन प्रभ दाते जी होए मेहरवान रहाओ। नानक जन सरनाए जिन पूरन पैज रखाए सगले दुख मिटाए सुख पुंचो मेरे पाए। सोरठ महला पंजवा सुनो बेनती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे राख पैज नाम अपने की करन करावन हारे। प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सरपाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनिद पार उतारे। संतन के कार सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपानद पूरन खसम हमारे रहाओ। आओ बैठ आदर सब थाई ऊन ना कथू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नौवा इक ओंकार सत गुर प्रसाद। रे मन राम सिंह कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत रहाओ। कर सा संगत सिमर मादो होए पतित पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ रखो चीत कह नानक राम पजले जात अवसर बीत। सोरठ महला नौवा मन की मन ही माहे रही नाहर पजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ। दारा मीत पूत रथ संपद तन पूरन सब माही अवर सगल मिथ्या ए जानो पजन राम को सही। फिरत फिरत बोते जुग हार्यो मानस देहो लही नान कहत मिलन की बरिया सिमरत कहां नहीं। सोरठ महला नौवा मर्रे कौन कुमत तैलिनी पर दारा निंद्यारस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन को ताया अंत संकाहु नहीं दीना बिरथा आप बंदाया। ना हर पज्यो ना गुरु जन सेव्यो न उपज्यो कछ ज्ञाना कठी माहि निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। भूत जन्म प्रमत तै हार्यो अस्थिर मत नहीं पाई मानस देहे पाए पद हर पज नानक बात बताई। सोरठ महला नौवा मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गनकासी उदरी ता को जस उतारो रहाओ। अटल प्यो त्रू जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता एहो बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब बिसरन गही कृपा निद गज ग्राहते छूटा महमा नाम कहा लो बरनो राम कहत बंधन तहे टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नान कैत चेत चिंतामन तै पी उतरे पारा। सोरठ महला नौवा प्राणी कौन उपाऊ करै जाते भगत राम की पावै जम को त्रास हरै रहाओ। कौन करम बिंदिया कहो कैसी तरम कौन फुन करी कौन नाम गुरजा कै सिमरै पुव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निद जाहे जपैगत पावै और त्रमता कै सम नाहन एह बिद बेद बतावै। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मह बसै निरंतर नानक दर्पन्याई। सोरठ महला नौवा माई में कह बिद लखो गोसाई महा मोहो अज्ञान तिमर मोह मन रहो उर्जाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निसबासो न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना नह कीर्त प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुण राख लिहु सिर नाई। सोरठ महला नौवा माई मन मेरो बस नाहे निसबासुर बिखियन को तावत कह बिदरो को ताहि रहाओ। बेपुरा सिमत के मत सुनिमख नाहिए बसावै परतन परदारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजत नह कछ ज्ञाना कठी पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्म सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ महला नौवा रे नर एहो साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे एहो सुख माया के उर्ज्यो कहां गवार। अजो समझ कछ बिगड़ियो नाहिन पजले नाम मुरार कहो ना निज मत साधन को पाख्यो तुहे पुकार। सोरठ महला नौवा एहो जग मीत ना देख्यो कोई सगल जगत अपने सुख लाग्यो दुख मै संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे जब ही निरतन देख्यो नरको संग छाड़ सब पागे। कहो कहा या मन बोरे को इन स्यों ने हो लगायो दीना ना सकल पै पंजन जसता को बिसरायो। स्वान पूजियो पयो ना सुदो बो जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ महला नौवा मन रे गहियो ना गुर उपदेश कहां पयो जो मुंड मुंडायो पगवो कीनो पेस रहाओ। सा छाड़ कै झूठो लाग्यो जन्म कार्थ खोयो कर प्रपंच उदर निज पोखियो पसुन की न्यायी सोयो। राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहियो बिखियन संग बोरा नाम रतन बिसराना। रहियो अचेत नाचेत्यो गोविंद बिरथा औद सिरानी कहो नानक हर बिरद पछानु पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नौवा
0: ਸਨੇਹਰ ਪੈ ਨੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਹਾਟੀ ਮਨ ਹਾਉ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਹਰਕ ਸੂਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹਿ ਨਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚਿਹ ਪਰਸਾ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਕਾਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਯੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੁਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੁ ਦਿਸ ਘੇਰਾ ਪਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰਾ। ਕਰਕੇ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸੋ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਬ ਹੀ ਨਾ ਸੰਸਥਾ ਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਗੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ अंत बार नानक बिन हर जी को कामना आयु सुरठ महला पहला कर पहला अष्टपदिया चौथुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो मढ़ मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पहाई तू आपे दाना आपे बीना तू देवे मत साई मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन बेद्या मेरी माई आंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे सुन लिव लाई रहाउ असंख बैरागी कह बैराग सु बैरागी जे खसम पावै हिरदा शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावा एको चेता मनुआ ना डोल ताबत वर्ज रहावै सहजे माता सदा रंग राता सचे के गुण गावै मनुआ पौन बिंद सुख वासी नाम वसा सुख पाई जिहबा नेतर सोतर साच राते जाल बूझी तुझे बुझाई आस नरास रह बैरागी निजकर ताड़ी लाई भिक्षा नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई दुबदा विच बैराग ना होवी जब लग दूजी राई सब जग तेरा तवेको दाता अवर ना दूजा पाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख देव डियाई अपरे पारे अगामे अगोचर कहना की मना पाई सुन समाद महा परमारथ तीन पवन पत नामंग मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामंग कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामंग मानमुख झूठ लह पैमानंग आपे ज्ञान आगामंग जिन चाख्या सी साध जानन जो गुंगे मठियाई अकथ का क्या कथिय पहाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवै ने गुरे मत न काई जो चलाए त्यों चालै पाई होर क्या को करे चातुराई एक भरम भुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे किश होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिलया कृपा कीनी अमृत नाम अधारा गगनंतर वास्या गुण परगस्या गुण में ज्ञान ध्यान ना मन भावै कह कहावै तत्व तत्व वखानंग शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानंग पूरा बैरागी सहज सुपागी सच नानक मन मानंग सुरठ महला पहला ते तुकी आसा मनसा बंदनी पाई आसा मनसा बंदनी पाई कर्म धर्म बंधकारी पाप पुन जग प जाया पाई बिन सनाम बिसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सब बेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख बजा पाई सो आत्म तत् बिचारी रहाओ सास्त वेद बका खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल ना चूकई पाई अंतर मैल विकारी इन बिद डूबी मांकुरी पाई उंडी सिरकै पारी दुरमत कनी बिगूती पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम ना पाईए पाई बिन नाम भरम न जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई साच सहज गुर ते उपजै पाई मन बिस निर्मल साच समाई गुर सेवे सुबूजै पाई गुर बिन मग न पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावै पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही बिलोईए पाई विचों निकल तथ जल मथिए जल देखिए पाई एह जग एह वथ गुरबिन परम बिगुचिए पाई कड़ कड़ देव अलख जग तागो सूत को पाई दद संबंध माए बिन गुर गांठ ना छूट पाई था के कर्म कमाए एह जग परम भुलाया पाई कहना किशु न जाए गुर मिलिया पाओ मन वस पाई पै मरना सच लेख मज्जन दान चंगियाईया पाई तरकह नाम बसेख गुर अंकस जन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका भेख ए तन हाट सराप को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ा पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सुरठ महला पहला जिनी सतगुर सेव्या प्यारे तिनके साथ तरे ਤਿਨਾ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ, ਬੂਢੇ ਭਾਰੇ ਪੈ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪੀ ਤੁਹਾਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨ ਬੋਹਿਤ ਭੈ ਡੁਪੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਹੇ ਕਹਾ ਰਹਾਉ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਹਣ ਸੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਰਸ ਲੈ ਤਤ ਵਿਲੋਏ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਸਾਚ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਗੁਰਬਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਨ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਰ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਊਂਦੋ ਸਿਰ ਕੈ ਪਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਜਾਦੋ ਜਾਏ ਹੁਕਮੈ ਬੰਨ ਚਲਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਹੁਕਮੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮੈ ਗਣਤ ਗਨਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਹਉਮੈ ਦੋਏ ਹੁਕਮੈ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅਵਗੁਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ ਹੁਕਮੈ ਸੁਝਾਪੈ ਸਹ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਆਖਣ ਔਖਾ ਪਿਆ ਆਖੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਐ ਸਚ ਨਾਉ ਜਿਨੀ ਸੋ ਸਾ ਲਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਪਿਆਰੇ, ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ ਆਇਆ ਕਾਗਦ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਮਸਵਾਨੀ ਤਹਾਰ ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ ਤਨ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚ ਲਿਖੈ ਉਰ ਧਾਰ ਸੁਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਤਕੀ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਦਾਤੋ ਨਿਰਮਲੋ ਪਹਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਹੋਏ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਣੇ ਪਹਾਈ, ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਸੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਝ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਵੇਖ ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਅਪਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਬਸੇਖ ਰਹਾਉ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਮੋਹਿਆ ਭਾਈ, ਚਤੁਰਾਈ ਪਤ ਖੋਏ ਚਿਤ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਸਚ ਵਸੈ ਪਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮੋਏ ਰੂੜੋ ਰੂੜੋ ਆਖੀਏ ਪਾਈ, ਰੂੜੋ ਲਾਲ ਚਲੂਰ ਜੇ ਮਨ ਹਰਸ ਬੈਰਾਗੀਏ ਪਾਈ, ਦਰ ਕਰ ਸਾਚ ਅਪੂਲ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ ਤੂੰ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪਾਈ, ਚੂਕਾ ਮਨੋ ਕੁਮਾਨ ਜਲਮਲ ਕਾਇਆ ਮਾਂਜੀਏ ਪਹਾਈ, ਪੀ ਮੈਲਾ ਤਨ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨਹਾਈਏ ਪਹਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਪਹਾਈ, ਕਿਆ ਮਾਂਗੋ ਕਿਆ ਦੇਹ ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਪਹਾਈ, ਜਲਮੈ ਬੂਡੈ ਤੇਹ ਗੁਰਬਿਨ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੀਏ ਪਹਾਈ, ਜਗ ਪੂਡੈ ਪਤ ਖੋਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਥ ਵਡਾਈਆਂ ਪਹਾਈ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ ਬਈਅਰ ਬੋਲੈ ਮੀਠਲੀ ਪਹਾਈ, ਸਾਚ ਕਹਿ ਪਿਰ ਪਹਾਏ ਬਿਰਹਿ ਬੇਦੀ ਸੱਚ ਵਸੀ ਪਹਾਈ, ਆਦਿਕ ਰਹੀ ਹਰ ਨਾਈ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਤੇ ਬੁੱਝੈ ਸੁਜਾਨ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸੀ ਉਭਰੇ ਪਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਈਂਧਨ ਅਧਿਕ ਸਕੇਲੀਐ ਪਹਾਈ, ਪਾਵਕ ਰੰਚਕ ਪਾਏ ਖਿਨ ਪਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪਹਾਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਨ ਸੁਭਾਏ ਸੁਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰ ਨਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ

जाति हूँ तू जाता, माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता। हों मैं मार मनसा मन समानी, गुर कह शब्द पछाता। अचिंत काम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। गुर पर सत सदा मन वस्या, सब काज सवारन हारा। उन्ना की रीस करे सब गुच्चा, जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किन न पाया, मन मुख पौंक मुह बिल लाई। आवै जावै ठौर न पावै, दुख में दुख समाई। गुरमुख होवै सो अमृत पीवै, पाप सहजे साच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करै अधिकाई। वेद पढ़ै तै वाद बखान, बिन हर पात गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, भाज छूटै गुर सरनाई। जिन हर मन बसिया से दर साचे, दर साचा सचियारा। उन्हां दी सोभा जुग जुग होई, कोई न मेटन हारा। नानक तिनकै सद बलिहारा, जिन हर राख्या उर धारा। सूरठ महला तीजा दुतुकी, निगुणिया नू आपे बख्श लैं भाई। सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है भाई। राम नाम चित लाए, हर जीव आपे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरा सतगुर लै रलाए। राहो कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे, साचा शब्द विचार। भौजल पार उतारियन पाई, सतगुर बेड़ा चाढ़। मनूरा ते कंचन पै पाई, गुर पारस मेल मिलाए। आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हो वारी हो बार न पाई, सतगुर को सद बलिहारा जाओ। नाम निधान जन दिता पाई, गुरमत सहज समाओ। गुरबिन सहज न उपजै पाई, पुछो ज्ञानिया जाए। सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विचों आप गवाए। गुरमति पाओ उपजै पाई, पाओ करनी सचसार। प्रेम पदार्थ पाईऐ पाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवै अपना पाई, तिन कहो लागो पाए। जन्म सवारी अपना पाई, कुल पी लई बख्शाए। सच बाणी साच शब्द है पाई, गुर कृपा दे हुए। नानक नाम हार मन वसै पाई, तिस बिघन न लागै कोई। सूरठ महला तीजा, हर जीव शब्द जापदा पाई। पूरा भाग मिलाए, सदा सुख सुहगनी पाई। अणदन रतिया रंग लाए, हर जी तू आपे रंग चढ़ाए। गावो गावो रंग रथ्यो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाए। सदा सहज फिर दुख ना लगई पाई, आप वस मन आए। फिर का हुक्म ना जानई पाई, सा कुलखनी कुनार। मन हठकार कमावनी पाई, बिन नावै कूड़ियार। से गावह जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चे बैराग। अणदिन राते गुण रवै पाई, निरप गुर लिवलाग। सबना मार जिवर दा पाई, सो सेव दिन रात। सो क्यों मनो वसारिये पाई, जिस दी वड्डी है दात। मनमुख मैली डुमनी पाई, दरगाह नाहीं थाओ। गुरमुख होवै ता गुण रवै पाई, मिल प्रीतम साच समाओ। एत जन्म हर ना चेत्यो पाई, क्या मुँह देसी जाए। किड़ी पवंदी मोहायुन पाई, बिख्या नो लोभाए। नाम समालै सुख वसै पाई, सदा सुख शांत शरीर। नानक नाम समाल तू पाई, अपरंपर गुणी गहीर। सूरठ महला पंजवा, कर पहला अष्टपदिया। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, सब जग जने उपाया पाई। करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई। देकर अपनी बत, किन कहिए क्यों देखिए पाई। करता एक अकथ, गुर गोबिंद सलाहिए पाई। जिसते जापै तथ, मेरे मान जपिया हर भगवंता। नाम दान दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ। जाकै घर सब किश है पाई, नौ निद भरे भंडार। तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊचा अगमे अपार। जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार। सतगुर पूरा भेटी पाई, शब्द मिलावन हार। सचे चरण सरेवी पाई, प्राम पौ होवै नास। मिल संसबा मन मांझी पाई, हर कै नाम निवास। मिटे अंधेरा अग्नि।